मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वडक्कम, केम छो।

तक पहुंचना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं एसीटी देसी पे हम सुने, तो जरूर रीच आउट कीजिए थ्रू माय पेज विच इज content-artist.com, या आप मुझ तक पहुंच सकते हैं मेरे फेसबुक पेज जो कि है facebook.com/ACTDesiFM, और ACTDesi को आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे भी और आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड एक्ट देसी। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।